दोस्तों, मैं हूँ आरजे आकांक्षा और लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्यार भरी आवाज लाइव प्रोग्राम, जो सिर्फ एक गीत ही नहीं, एक जज्बात और एक सुकून होगा और सबसे खास सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के करीब होगा। तो सुनना मत भूलिए प्यार भरी आवाज सिर्फ और सिर्फ आरजे आकांक्षा के साथ। हर सुर मोहब्बत, हर बात में सुकून, हर बात में सुकून। हर ट्यूसडे सुबह 11 बजे कॉल 0474293111। सिर्फ कम्युनिटी रेडियो बेंसिकर 107.8 पर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? उम्मीद है आपकी मुस्कान भी ऐसे ही चमक रही है जैसे आज का दिन। आप सुन रहे हैं रेडियो बेंजीकर 107.8 पर और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे आकांक्षा, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्यार भरी आवाज। आज का दिन और हर ट्यूसडे जो भी आता है वो हमेशा खुशियों से, गीतों से और दिल से दिल तक बातें करने वाला दिन है। मेरे दोस्त, जो कुछ अगर चाय की चुस्कियाँ पी रहे हैं या सफर में ट्रैवल कर रहे हैं, उन सभी दोस्त के लिए, या कोई दोस्त जो घर पे आराम कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए आवाज और प्यार भरी आवाज शुरू हो चुका है। तो अपना रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि होने वाले हैं बहुत सारे खूबसूरती प्यार भरे गानों की बरसात ओनली ऑन 107.8 पर। प्यार भरी आवाज सुनते रहिएगा आरजे आकांक्षा के साथ, प्लेइंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग लगा लगा लगा रे ओनली ऑन 107.8 पर। कीप लिसनिंग।

0: ये था मेरी मनपसंदीदा गाना आप सबके लिए। तो चलिए बारी आपकी है दोस्तों, डायल करें 0474-293-1111 पर, 0474-293-1111 पर। आज का पहला कॉलर देखते हैं कौन से गाने अपने फेवरेट सारे लेके आते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
0: ये कौन है, किसकी एनर्जेटिक आवाज है ये?
1: मेरा नाम सुभाष, आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम आकांक्षा है।
1: कितना दिन हुआ, कितना महीना हुआ, मैं बात करती।
0: क्या बात है, इतने दिनों के बाद क्यों कॉल किया आज?
1: आज एक गाना मांग दे।
0: कौन सा गाना मांगता है आपको, बोलिए।
1: वो गाना सौदागर का।
0: ओके, वैसे आपका दिन कैसे जा रहा है सुभाष?
1: आओ मैं इधर है, वो अच्छा ठीक से जा रहा है। अभी मैं कॉलम में।
0: अभी आप कॉलम में है, ओके। तो चलिए आपका फेवरेट गाना प्ले करते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया, दिन आपका शुभ हो। कीप लिसनिंग, प्यार भरी आवाज, ये रहा सॉन्ग हम प्ले करने वाले हैं।

0: हमारा तो बंधन अनजाना नहीं, एक दोस्त वाला है जहाँ पे होती है हंसी मजाक और ढेर सारी बातें। आप सुन रहे हैं प्यार भरी आवाज, मेरे साथ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आकांक्षा। मिलते हैं हमारे अगले कॉलर से। हमारे दोस्त कौन से और कहाँ से है, डायल करें 04742931111 पर, 04742931111 पर। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: शिबिन कामरकलों से।
0: कैसे हैं आप शिबिन जी?
1: ठीक है ठीक है, डबल ठीक है।
0: डबल ठीक है।
1: आप कैसा हो?
0: मैं बढ़िया हूँ।
1: ओके।
0: आप बोल रहे थे डबल ठीक है, मैं बोलनी चाह रही थी मैं चार फोर टाइम्स ठीक हूँ।
1: डबल
0: डबल डबल इनटू टू।
1: ओके जी,
0: बताइए आज कौन सा सुनना गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं बोल रहा ना था, कहो ना पहले है जानमिन सॉन्ग, आशा भोसले जी सॉन्ग।
0: प्यार की कश्ती में, नहीं नहीं
1: जानमिन जानमिन
0: ओ
1: पलक तेरी नजर
0: जहाँ है दिल रुका,
1: देखता है किधर मिला है दिल से दिल, प्यार से प्यार से, उधर तो रात है सवेरा है इधर।
0: क्या बात है, आप बड़ा अच्छा गाना गाते हैं शिबिन जी।
1: ओके ओके, थैंक यू।
0: ऑलराइट, चलो
1: फिर। ओके जी,
0: ओके देन, कीप लिसनिंग प्यार भरी आवाज, आपका दिन शुभ हो। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना जिसे गाया है आशा जी ने, फ्रॉम मूवी कहो ना प्यार से।

0: जानेमन जानेमन सुनता है किधर, यहाँ है प्यार भरी आवाज सिर्फ रेडियो बेंजिगर पर 107.8 पर. आप सुन रहे हैं प्यार भरी आवाज ओनली ऑन विथ योर फेवरेट होस्ट आज ए आकांक्षा. तो अगला कॉल देखते हैं कौन और कहाँ से है. हेलो. ओके दोस्तों,
1: गुड मॉर्निंग.
0: हेलो, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया.
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे दोस्त?
1: दिल को देखो चेहरा ना देखो.
0: कौन सा गाना?
1: दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है.
0: अच्छा, आपके चेहरे को किसने लूटा है?
1: ये विद्या भी हकीकत है.
0: जरूर जरूर.
1: वाह, इसके लिए कोई ऐसा फंसा रहते फंसता नहीं मांगते.
0: जी जरूर. एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया. आप बताइए.
1: बस बढ़िया. अपने वाइफ आपको बात करना चाहता है, मैं उनको देता हूँ.
0: जी जी जी.
2: हफ्ते में हम आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन मिलता ही नहीं है.
0: ओहो, आज मिल गया बट. तो चलो अच्छी बात है.
2: नहीं, पवन कह रहे थे हम लोग ट्राई कर रहे दोनों बार, ये फोन हो मिलता ही नहीं. बाई चांस मिल गया
0: आज. मिल गया ये. कैसे हैं आप?
2: ठीक है, चला रहे हैं. बुढ़ापे हो गए अभी.
0: उल्टा और थोड़ा जोश में चाहिए पता है. एक एग्जांपल सेट करना चाहिए कि ओल्ड एज में भी एकदम कूल एनर्जेटिक रहना चाहिए.
2: हाँ वो तो है, लेकिन ऐसे चलता है. लेकिन चलना फिरना थोड़ा पैर का प्रॉब्लम है, इसलिए चल नहीं सकती हूँ मैं.
0: ओके ओके. तो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो?
2: हाँ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अपने घर में कोई अपने को करने के लिए औरत को रखा है, इसलिए चलता है.
0: ओके ओके, बट ख्याल रखिएगा अपना. ओके तो चलिए मैं आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले करती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा प्यार भरी आवाज विद आरजे आकांक्षा. कीप लिसनिंग.
3: കാനഡ എന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. കാനഡയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായ എണ്ണം അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടുകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പാവപ്പെട്ടവർക്കായി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ 4 കോടിയിലധികം PM ആവാസ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു. ഇത് കോടിക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തി.
4: പന്ത്രണ്ട്
3: വർഷങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും ജനക്ഷേമത്തിന്റെയും
5: സദാബഹാർ വീഡിയോസ് ടെക്നിക്.

0: इस गाने ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। इंसान की खूबसूरती तब निखर आती है जब वो दिल से खूबसूरत होता है। आप क्या, मैं भी अग्री करती हूँ इस बात पे। इंसान को मतलब आज खूबसूरती, आज चेहरे की खूबसूरती है कल नहीं है, बट दिल की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है। तो दोस्तों दिल से खूबसूरत रहिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले कॉलर से। और वैसे दोस्तों, चाय हो या कॉफी, घर हो या ऑफिस, म्यूजिक का साथ जरूर जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए डायल करिए 0474-293-1111 पर, 0474-293-1111 पर। मिलते हैं अगले दोस्त से। कौन सा गाना लेके आते हैं ये शो पे, सुनते हैं। हेलो,
1: नमस्ते, कृष्ण मुंडगल बात कर रहे हैं।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते, अभी ठीक है?
0: अभी एकदम बढ़िया, आप बताइए। ओके, तो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: हमका वो पहले वो मुरलीधरन बिरला उसको बोला गाना, तेरे मेरे बीच में।
0: अच्छा, वो गाना
1: फेवरेट गाना है।
0: आपको कौन सा सुनना है? वो गाना तो सबका फेवरेट है, तो आपको कौन सा सुनना है?
1: हमका गाना आ गया दिल रूबा में आ गया, ये गाना पांच नंबर है, सलमान खान का फिल्म है, तरस है, इस फिल्म का नाम तरस है। हमारा दोस्त चार पांच आदमी इधर है, इसका हमारे पास बोला ये गाना पूछो, अब फर्स्ट टाइम में सुना ये गाना।
0: ओके, तो चलिए
1: डांस करने का तैयार है पूरा आदमी।
0: अरे सच्ची में, तो हो जाए फिर।
1: सच बोल रहे।
0: देखना, जरूर डांस करना, ठीक है? और अगले ट्यूजडे मुझे बताना किया या नहीं किया। ओके, ऑल राइट, थैंक्स दोस्त कॉल करने के लिए। सुनते हैं ये डांस नंबर वन सॉन्ग ओनली ऑन रेड एफएम, ओनली ऑन रेडियो बेंजीगर 107.8 पर। प्यार भरी आवाज आरजे आकांक्षा के साथ, कीप लिसनिंग।

दोस्तों आ गया है, आप सुन रहे हैं प्यार भरी आवाज और मैं हूं आपकी फ्रेंड आरजे आकांक्षा। आ गया है टाइम मेरे जाने का, मिलेंगे अगले हफ्ते। ओके दोस्तों, तो फिर अगले हफ्ते अपनी प्लेलिस्ट रेडी करके रखना। और आज के गाने बड़े ही मस्त जोश वाले थे, शुक्रिया दोस्तों आज के गाने से चार चांद लगाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम पे 11 बजे ओनली ऑन 107.8 पर रेडियो बेंसीकर। ढेर सारी खुशियाँ आपके नाम और आपके लिए हमेशा ढेर सारा प्यार। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर विदा लेती हूँ आप सब से। ओके, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ विथ लॉट्स ऑफ लव, आरजे आकांक्षा, टेक केयर, बाय बाय।